इस्तेमाल करें, ये बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। इसकी कीमत जो है वो 350 रुपए है। ओडीआई खान और मुख्तलिफ केपीके के इलाकों में हर छोटी बड़ी शॉप पर दस्तियाब है। स्पेशली उन बहन भाइयों के लिए जिनके चेहरे पर एक्नी है और आयल का मसला है। मजीद मालूमात के लिए 0342-311-2292 पर कॉल कर

0: Your music, your request.
1: This is radio station, Radio Aman.
2: You are listening to Radio Aman Network.
0: We got more hits for you, so stay tuned.
2: 88.4 FM.
3: No tension rise with fast from chest as much over cave pula has of tasu makri nanomulan. Hagazmu pendi chi vai chi domapo makundi the hunat will saridi. Yet the dinel was the gulani turi turi halke judishi via rikivajim gadere ziati parishan you. Bilkul jeep of market key was available the no tension rise with fast over sera no tension formula cream. A compassi master at sasmak bashi naram mulam chamandar out the star gulani turi turi halke pamukamal to gala rikavizi. Bilkul do in tizar the खबरें हम उस लाशे पर मार्केट के नो टेंशन राइस फेस वॉश नो टेंशन फार्मूला क्रीम और नो टेंशन ब्यूटी सो प्रवाह ले और इस्तेमाल के मेन शिलाफ के रिजल्ट बताओ तो मिला भी गी नो बिल्कुल परेशान के गेमा को मार्केट की अवेलेबल दी नो टेंशन प्रोडक्ट्स जाने रवाह ले इस्तेमाल के मैंने ने चीज
4: दिल से जो निकलती है दिलों तक जो जाती है मालूमात को जगाती है दुनिया का हाल बताती है ये वो आवाज़ है जो आपके शहर में आपको अपनों से मिलाती है ये आवाज़ है जो अमन की है ये वो पैगाम है जो अमन है रेडियो अमन 88.4 अमन का पैगाम

मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज़ है क्या लौह कलम मेरे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशीला, हमारे साथ हमारे साथ।

0: मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
1: हर कदम दिखाओ
2: गुलोनी होरिस्ता पुंदे हो माह के डेरी ज्याते हरा बेवे नु दुम रजर सिंगर टिक्शुले यह हो रेन हो रे माह हो माह के डेरो कपनो क्री क्री में इस्तेमाल करल हो माता ही सु रिजल्ट ओ फायदा न कड़ारा और चिकला मा उरुसा शॉपिंग सेंटर ना जान द पारा इश्म क्री क्रीम रावड़ल नु माता डेर जबरदस्त रिजल्ट राको रज गुलोनी हो रे जय हम जान द पारा रावड़म इश्म क्री क्रीम कता सो हम वाड़ो चिमुंग पुंद सफा सुथरा और हिस्तशी नयो जल जरूर इस्तेमाल कई इश्मा क्रैक क्रीम।
3: जिंदगी में सुकून सेह से जुड़ा होता है और जब इलाज कुदरती हो तो यकीन खुद बहुत बढ़ जाता है। इश्मा हर्बल आयल कुदरत का इलाज, सुकून का एहसास और शफा का भरोसा। इश्मा हर्बल ऑयल कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा एक ऐसा ऑयल जो बेशुमार बीमारियों में मुफीद है, जैसा कि मैदे की तेजबियत, जलन, बदहजमी, बोक की कमी, कब्ज, दिल और गुर्दों की तकलीफ, जोड़ों और पट्टों के दर्द, सर दर्द, मौके चाले, ये सब तकलीफ अब खत्म, क्योंकि हल है सिर्फ और सिर्फ इश्मा हर्बल ऑयल। कुदरती जड़ी बूटियों से तैयार करदा ये शिफा बहश ऑयल जिस्म के अंदर और बाहर

बिल्कुल इश्मा कॉस्मेटिक से हमारा प्रोडक्ट दी हर कॉस्मेटिक स्टोर के तो सब आसानी से मिला जी नो बिल्कुल सर तक हाँ न मिले जी बिल्कुल कंपनी हेल्पलाइन नंबर जी कंदाई पे बने कॉल जरूर कवली शी और मालूम बिल्कुल खुशाई शी जहाँ प्रोडक्ट हो इन इश्मा कॉस्मेटिक्स को प्रोडक्ट दी पते के चार तक मिले जी हो बिल्कुल दासी बा कॉस्मेटिक स्टोर ने भी चाल तक इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट ने भी नोहार कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के तो कॉस्मेटिक स्टोर के तो सा इश्मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कम दिस पासा नहीं सर मिले जी आओ दिन लो बिल्कुल न सब हो कहो से गर्मी हटी रसियो तो डे बाय डे चुकम दे गर्मी से जफा कीजी नो तो से बिल्कुल दस के वे पते गर्मी के इश्मा सन ब्लैक चुकम दाए अगे इस्तेमाल जरूर कवे जैसे कि जी सड़ाई जी बाहर तक गर्जी गर्मी तक गर्जी नो फेस चुकम दे आगा मतलब खराबी जी नो चिकल हाँ तो से इश्मा सन ब्लैक बोले गई नो बिल्कुल इश्मा सन ब्लैक चिकम दाए आगा तो से बिल्कुल मख हिफाजत कवलेशी

0: बिल्कुल एशमा कॉस्मेटिक का जो प्रोडक्ट थी तो सब करक सिटी के हार कॉस्मेटिक स्टोर के मिला विदाई देने लबा दास अंबेरी गली के तो से मिला विदाई औरोसा शॉपिंग सेंटर कारिन और खिताब से सर तो से टोल प्रोडक्ट मिला विदाई देने लबा दास मंगल सर तरुष के ना मौलाना अब्दुल हलीक से बा से हाय बार प्लाजे की दिखो दाए नवाल के दोस्त टोल प्रोडक्ट मिला विदेशी कसी चिकाल बने सुख दिखे दे असला जी सुख खबर है क्यों जरा हेलो खाजी बिल्कुल तो से कॉल चुकुम दे हाँ ड्रॉप शो बस सिर्फ सलाम यू को बस शाह खबर दो सौ खबर है उसी का कैसी जब गाल बने बल सुख दिखे हमसे ना दे अस्सलाम वालेकुम जी सुख खबर है क्यों किम जरा रुकैया खबर है क्यों देख करक ना रुकैया पर खैर रुगले प्रोग्राम के इन इश्मा कॉस्मेटिक पाकिस्तान प्रोग्राम के दर्ता हर कले हुए खजी सरंगे शाही अखबला बांधे अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक तुसे दो गो नहीं दी
1: भाई मंसूर देशमा
0: अच्छा दा तुसे रोड़ी थी सही तो सा रिजल्ट दर करे दे
1: ब्लीच भाई
0: अच्छा ब्लीच हाँ सही कम ब्लीच हो
1: परमोला ब्लीच
0: सही सही सही बिल्कुल तो से इस्तेमाल करी तो फायदा दर करे
1: भाई मसूर दे ब्लीच हो
0: सब पैगाम बोर के भाई सुमरा हमी नवाल दिया गया तब पैगाम सबर के
1: भाई मसूर दे ब्लीच हो
0: अब यान छे सुमरा हमी नवाल दी टांक रेडियो मी नवाल दी करक रेडियो मी नवाल दी टोलो तो बस सब पैगाम और केवेश मा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट वाले सर
1: भाई रा पैगाम दे छे टोल जोर दे दे छे वन दा इस्तेमाल की
0: अच्छा जी सही मतलब सुमर हम प्रोडक्ट दी छे मतलब चाहता जरूरत ज्यादा इस्तेमाल किया
1: आ भाई
0: सही सो डे रमन ना लो ये खसे कॉल के वाले
1: थैंक यू
0: मैम ओके लाफीज कॉल के वाले डे रमन ना रुकैया कॉल करे मत करक ना डे रमन ना कैसी चीज़ बकाल बने बल सो को दिखें थे नर दरिमी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम
2: वालेकुम सलाम दरकर से दफ्तर के मुबारक शाह
0: खैर मुबारक जी सुख खबर के वे किम से ना
2: अरजोला खबर को मैं चरगले एक या कदी की
0: हां जी बिल्कुल सही तो से छा तक कॉल कड़ाई दाई अच्छा जी बिल्कुल बिल्कुल दा ये नंबर बिल्कुल दे बने हम प्रोग्राम से कॉल से मिली जी आप इंशाल्लाह डेढ़ हजार रोशी ठीक शो मतलब वो सोई तेर शो नो ईद ने बाद में इंशाल्लाह देर सी सही दा बिल्कुल या होना देर कॉल है ठीक शो देर मन ना कॉल के वाले यो जहान मना

0: It's 4 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Amar. Jan Rang Amar.
1: Your music, your request.
2: This is Radio Station. Radio Aman.
0: Welcome to Radio Aman 88.4.
3: क्या आप बालों के गिरने, खुश्की और कमजोर बालों से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़ दें, क्योंकि आ गया है डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू आपके बालों की मुकम्मल हिफाजत के लिए। कुदरती अज्जा से तैयार करदा बालों की जड़ों को मजबूत बनाएं, बालों को दे कुदरती चमक और नरमी, खुश्की और हेयर फॉल में मददगार। डॉक्टर जैन हेयर ऑयल आपके बालों को इजाइत फराहम करें, जबकि डॉक्टर जैन शैम्पू गहराई से साफ करके ताजगी देता है। सिर्फ चंद हफ्तों के इस्तेमाल के बाद महसूस करें मजबूत, घने और सेहतमंद बाल। अपनी खूबसूरती में इजाफा करें और अपने बालों को दें बेहतरीन केयर। आज ही इस्तेमाल करें डॉक्टर जैन हेयर ऑयल और शैम्पू, क्योंकि खूबसूरत बाल आपकी पहचान है। तो पता याद रखिए, हमजा जनरल स्टोर, न्यू बनोसी होटल, टांग सिटी। मोबाइल नंबर 0344-9363-780। व्हाट्सएप नंबर 0342-2648-435।
0: You are listening to Radio Aman Network.

जनाब ईद का जो जोश खरोश होता है और इसका असर यकीन कीजिए कि बहुत सारे लोग आज भी बाजार सुनसान पड़े थे और लोगों आने को दिल ही नहीं करता। तीसरे दिन तो बिल्कुल भी जब तक चार ईदें ना गुजरे ना, मैं मुझे तो याद नहीं है कि मैंने चार ईदों से कभी जो है कम ईदें मनाई हूँ, क्योंकि तीन ईदें तो मनाते हैं और चौथा बाजों का जो है रेस्ट भी करते हैं, रिलैक्स भी होते हैं और अपनी बॉडी को और अपने जहन को समझाते हैं भाई अब काम के ऊपर भी जाना है।

तो जनाब कैसे नेक्स्ट पाकिस्तान की तरफ से खलील ताबे शमान की तरफ से तीनों बड़े डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेरा इस्माइल खान में ग्लोबल एफएम 91 के तमाम सुनने वाले, पहाड़पुर में रेडियो पैगाम 97.4 को सुनने वाले और टांग शरीफ में, हाँ जी टांग में 88.4 अमन रेडियो को सुनने वाले को खलील ताबे शमान की तरफ से ये कुर्बानी बहुत बहुत मुबारक हो। ईद का 14 दिन आपको बहुत बहुत मुबारक हो जनाब, और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी कुर्बानी के साथ साथ आप सभी लोगों की कुर्बानियों को भी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन आमीन जुम्मा आमीन।

जी जनाब, टी टाइम में एक दफा फिर से जनाब थोड़ी सी ब्रेक आप लोगों ने ले ली। चाय वैसे मुझे अभी तक नहीं मिली है, ठीक है जनाब, चाय मेरी आज लेट है, लेकिन टी टाइम स्टार्ट हो चुका है जनाब तीनों स्टेशन के ऊपर और अच्छा सा मौसम बन गया है जनाब। आज सुबह सुबह जो है 11 बजे के करीब हमें खबरें मिली कि भी लाहौर के अंदर यालाबारी हो रही है और साथ में बारिश हो रही है, और जब सीन वहां पर कहा देखा तो यकीन कीजिए वो दिसंबर याद आ गया। धुंधनुमा इस तरह का कोई माहौल बना हुआ था, दिल बड़ा कर रहा था कि भाई इधर इतनी गर्मी है, तो अल्लाह ताला का करम हुआ है और मेरे ख्याल में कि तीनों बड़े शहरों के अंदर जहां जहां मेरी आवाज सुनाई दे रही है, ठीक है जनाब, उनकी भी आज ईद खुशगवार हो गई होगी। और मैं अगर थोड़ा सा झांक के देख लूं तो बिल्कुल जनाब मौसम बिल्कुल भी जबरदस्त बना हुआ है, ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है एंड लाहौर में तो कमाल ही हो गया जनाब। लाहौरियों के पास जो ऐसी बारिश बरसी है कि टेम्परेचर 45 से 31 के ऊपर आ गया, ठीक है जनाब, यानी कि एक ही दिन के अंदर 15 दर्जे जो है वो दर्जे हरारत के नीचे आना बहुत बड़ी बात होती है और ये अल्लाह ताला की ब्लेसिंग है। और अभी जिन लोगों ने गोश्त नहीं खाया होगा अभी बारिश में, आज बड़ी बारबेक्यू बनेगी लाहौर में, उम्मीद है कि डेरस मलखान में भी कुछ ऐसा ही माहौल बन जाए, ठीक है, बारिश वारिश आ जाए तो जिन लोगों ने गोश्त जमा किया हुआ है भाई इस दफा गोश्त ज्यादा इकट्ठा नहीं करना भाई, है जी, बिजली का कोई भरोसा नहीं है, वो वाला सीन नहीं है जब 12-12 घंटे बिजली आपके पास होती थी, आजकल तो 4-6 घंटे बिजली आती है, तो गोश्त को जरा एहतियात के साथ जमा कीजिएगा, ठीक है जनाब, ऐसा ना हो कि वो स्मेल कर जाए, इससे बेहतर है किसी जरूरतमंद के घर चला जाए, किसी ने के घर में जो गोश्त नहीं आता, ठीक है जनाब, तो उनके घरों में जरूर पहुंचाएं और कुर्बानी के असल मकसद जो है वो लोगों के को दिली खुशी पहुंचाना है, और दिली खुशी खाने पीने से भी होती है, और जब खाने पीना वाफर मिकदार में हो और आपकी पसंद का खाना हो तो डेफिनेटली लोगों के चेहरों के ऊपर खुशियां आती हैं, और खुशियां लाना बड़ी महंगी चीज है जनाब, अगर आपकी वजह से किसी के चेहरे के ऊपर खुशी आती है तो भाई आप इस दौर के वली हैं फिर मुबारक हो। जी जनाब, तो अगेन जनाब सभी सुनने वालों को खलील ताबिश अमान का जो है सलाम के साथ साथ ईद मुबारक, और तीन दिन जो है तासीर भाई आप लोगों के साथ रहे हैं, तो आपने उनके साथ ईद कैसे गुजारी है वैसे, हाँ जी, मुबारक कोई बताया आप लोगों ने कितना गोश्त खाया है भाई, किस चीज की कौन कौन सी डिशे बनाई हैं, तासीर भाई ने पूछा या मुझे पूछना पड़ेगा,

0: लेकिन अब हमारे नंबर जो आप लोगों के पास मौजूद है और नंबर को आप लोगों ने सेव किया होगा, ऐसे तहसीर भाई ने कोई उनके अपने स्टूडियो का नंबर है, वही आपको बताया होगा जिसके ऊपर आप लोगों ने फीडबैक दिया होगा। लेकिन इस प्रोग्राम में आने के लिए ऑफिशियली हमारा जो अपना हेल्पलाइन नंबर है केसन का, और पहले तो जो है तासीर भाई का बेहद शुक्रिया। बहुत प्यारे दोस्त हैं मेरे और बहुत ही मुखलिस दोस्त हैं, ठीक है जनाब। और इससे पहले मेरा एक मीडिया चैनल है डेरा टीवी, सोशल मीडिया के ऊपर लोग सर्च करें तो डेरा टीवी HD के नाम से जो है वो भी केसन का टीवी चैनल है, न्यूज चैनल है। तो उसके ऊपर बहुत अर्से पहले, ये तो अभी हमारा चैनल जो है वो थोड़ा स्ट्राइक की जात में आ गया, अदरवाइज डेरा इस्माइल खान का सबसे बड़ा चैनल था डेरा टीवी, जो कि 1.5 लाख से ऊपर उस वक्त हमारे फॉलोअर थे जब लोगों के 20-20 हजार जो अभी लाखों के ऊपर पहुंचे, यानी कि उस वक्त हमारे 1.5 लाख फॉलोअर थे जब इस वक्त के जो चैनल आपको नजर आते हैं उनके 20-20 हजार 30 हजार थे। बहरहाल वो कुछ स्ट्राइक की वजह से हमारा चैनल जो है बैन हुआ, फिर उसके बाद हमें दूसरा बनाना पड़ा, लेकिन दूसरा भी अच्छा चैनल है हमारा। तो उसके ऊपर तासीर ने मेरे साथ बहुत ज्यादा रिपोर्टिंग की है, यकीन कीजिए हमने डेरा इस्माइल खान की तारीख में पहली दफा जो है रमजान की ट्रांसमिशन, जिस तरह टीवी ट्रांसमिशन होती है तासीर भाई के साथ जो है, तासीर नहीं बल्कि की है मेरे साथ जो रमजान ट्रांसमिशन थी कि डेरा टीवी की 3 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होती थी सोशल मीडिया की, वो तासीर ही करते थे। और आजकल के दौर में कोई भी आपके साथ जो है कोई काम करता है तो उसके जहन के अंदर कोई लालच होता है, कोई गर्ज जरूर होती है, लेकिन आप यकीन कीजिए कि तासीर मेरे इतने प्यारे दोस्त हैं कि उनके माइंड के अंदर ये चीज आती नहीं। मैं उनको बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, बहुत अच्छे तरीके से उनको मैं जानता हूँ कि वो जब भी मेरे साथ काम करते हैं ना, बिला किसी लालच के, बगैर किसी गर्ज के मेरे साथ काम करते हैं, तो उनका बेहद शुक्रिया, ढेर सारा तासीर के साथ शुक्रिया। और जब जब भी उनकी ज़रूरत पड़ती रहेगी इंशाल्लाह, हम शेड्यूल को देखते हैं कि शेड्यूलिंग में उनको 3 प्रोग्राम हम देते हैं या 2 देते हैं, जिस तरह आपकी पसंदीदगी होगी उसके मुताबिक जो है हम अपने प्रोग्राम की तरतीब सेट करेंगे। लेकिन उनका बेहद शुक्रिया कि उन्होंने 3 दिन जो मेरी मसरूफियत के दिन थे, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से, उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से इंटरटेन किया होगा। केसन का प्रोग्राम है तो जनाब बातें तो गपशप तो हम आपके साथ करते ही हैं, लेकिन असल चीज होती है केसन की प्रोडक्ट्स का जो पैगाम होता है कि केसन आप लोगों के लिए क्या प्रोडक्ट बना रही है, कौन से ऐसी प्रोडक्ट है जो आपको फायदा पहुंचा सकते हैं। अच्छे नंबर हमारे वही है 03449363366। चलो जी कॉलर्स को, अगर कॉलर्स की जल्दी है मुझे आप लोगों ने बात नहीं करने देनी तो फिर हम भाई ईद का मौका है आपको नाराज और निराश नहीं करेंगे। तो पहले कॉलर हमारे साथ मौजूद है, उनको हम मौका दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अलीन भाई सबसे पहले आपको और आपके लिसनर को बहुत बहुत ईद मुबारक।
0: अच्छा जी माशाल्लाह, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक मोहतरम।
1: थैंक यू सर, अल्लाह आपकी और हम सब मोमिनीन मुसलमानों की कबूल फरमाए अपनी बरगाह में।
0: आमीन।
1: वदी तौफीका में इजाफा फरमाए जी।
0: आमीन सुम्मा आमीन। आपकी ईद गुजर गई माशाल्लाह।
1: जी जी
0: मैंने कहा ईद माशाल्लाह अच्छी गुजर गई, आपकी अच्छी गुजर रही है?
1: बहुत बहुत बहुत अच्छी माशाल्लाह, बहुत बहुत अच्छी गुजर गई है।
0: कौन सी डिश के अंदर आपने अच्छे तरीके से गोश्त का मजा लिया है, कौन सी डिश के अंदर?
1: नहीं समझा सर।
0: मैंने कहा कौन सी डिश पिछले 3 दिनों में बनी है जिसमें गोश्त खाते हुए आपको मजा आ गया?
1: डिश तो रात को भी बिरयानी थी, आज दिन को भी सर।
0: अच्छा नहीं तो एक बता देना, सोबत के अंदर भी गोश्त होता है, पुलाव के अंदर भी होता है, काबली पुलाव के अंदर भी होता है, लड़मुन के अंदर नमकीन गोश्त के अंदर भी होता है, बिरयानी के अंदर भी होता है, तो कोई एक डिश का नाम बताएं जिसमें गोश्त खाते हुए आपको मजा ही आ गया कि यार वाकई कुर्बानी कर ली हमने।
1: बस तजावज कर गया हूं मैं चावलों में, पुलाव में गोश्त डाले घर वालों ने सामने हमने।
0: अच्छा यानी कि तजावज मतलब पुलाव के अंदर आपने दबा के जो है गोश्त खाया माशाल्लाह।
1: जी जी 12 से 14 तक।
0: अच्छा 12 से 14 पीसेस इन वन टाइम।
1: वन टाइम
0: फिर तो मेरे
1: विदाउट योर सिरप कंट्रोल,
0: विदाउट आस्मा कंट्रोल सिरप। वाह जी
1: कोई सिरप भी नहीं है इस
0: बार। अच्छा जी माशाल्लाह माशाल्लाह। हाजमा भाई आप हाजमा कंट्रोल सिरप हमारा पीते रहे हैं तो वो क्या वक्ती तौर पर काम करता है, उसने आपके मैदे को स्ट्रॉन्ग कर दिया, आपने इतना गोश्त खा लिया फिर भी आपका मसला नहीं बना?
1: बिल्कुल फ्रेश हूँ अभी, चाय भी पी है, बिस्कुट भी खाए, आपका प्रोग्राम भी सुन रहा हूँ रेगुलर अल्हम्दुलिल्लाह। कबीर भाई और मैं आप

प्रोडक्ट्स हमने बनाई हैं आप लोगों के लिए, वो आपको किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकते हैं। अच्छा जी, कुछ प्रोडक्ट हमारी कॉम्बिनेशन में है, ठीक है जनाब। हम आपको अक्सर बता रहे होते हैं कि भाई इसके अंदर ये चीज है, ये चीज है, ये चीज, ठीक है जनाब, इसके अंदर ये चीज, तीन तीन चीजें, चार चार चीजें, पांच पांच चीजें, जैसे केसन का ऑयल है 17 अज्जा पर मुश्तमिल है, ठीक है जनाब। इसी तरीके से केसन का जो शैम्पू है वो 13 अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरीके से जो केसन का गो पिंपल है वो तकरीबन 5 से 6 अज्जा के ऊपर मुश्तमिल है। इसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट किस्म के कॉम्बोज में प्रोडक्ट हमारे अवेलेबल है। एक बहुत ही इफेक्टिव और मैजिकली हमारा कॉम्बिनेशन मौजूद है जो मुख्तलिफ चीजों का है, लेकिन वो आपको जादू की तरह रिजल्ट देता है। और वो क्या है? वो है केसन शिफाए दर्द। अच्छा, केसन शिफाए दर्द जो है इसके ऊपर शुतुरमुर्ग की तस्वीर बनी हुई है। इसका मतलब यह है कि इसके अंदर जो चीज है उसका ताल्लुक शुतुरमुर्ग के साथ है, ठीक है जनाब। तो शुतुरमुर्ग बेसिकली एक हलाल फ्लाइटलेस परिंदा है, परिंदा परिंदों के क्लास में आता है, उड़ नहीं सकता ये, ठीक है जनाब। और इसका जो ऑयल होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सिर्फ शुतुरमुर्ग का तेल नहीं है भाई, ठीक है जनाब। आप ये ना समझें कि ये ओनली शुतुरमुर्ग का तेल है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। इसके अंदर तीन और चीजें हमने ऐड की हैं जो इसको मैजिकल बनाती हैं, जो इसी तेल को, अच्छा इस तेल का इस्तेमाल क्यों जरूरी है? क्योंकि इसके अंदर कैरियर ऑयल यही है, ठीक है जनाब। कैरियर ऑयल ये है कि और चीजें जो हमने इसके अंदर ऐड की हैं वो इसी ऑयल के अंदर मौजूद हैं। ये बेसिकली ये इंसानी जो जिस्म होता है ना उसके अंदर जो तेल होता है ना ये उसके साथ बहुत ज्यादा मुमासलत रखता है, ठीक है जनाब। यही वजह है कि आम तेल जो होता है, यानी कि जो बाजार में आपको दर्द को खत्म करने वाले तेल मिलते हैं, जब आप उन्हें लगाते होंगे तो वो स्किन के अंदर जज्ब नहीं होते होंगे, ठीक है जनाब। वो स्किन के अंदर जज्ब नहीं होते हैं, वो बाहरी सतह के ऊपर रहते हैं। जबकि केसन का ये जो हमारा हमने आप लोगों को शिफा दर्द ऑयल प्रोवाइड किया है, ये मैजिकल है। और मैजिकल इसलिए है कि इसके अंदर अगर आप सिर्फ खाली शुतुरमुर्ग का तेल लेंगे ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, वो टाइम लेगा आपको ठीक करने में, बहुत टाइम लेता है। यानी कि सिर्फ अगर शुतुरमुर्ग का तेल हो ओनली, ठीक है जनाब, जिसके अंदर कोई किसी किस्म की और चीज शामिल ना हो, तो वो बहुत टाइम लेगा आपको ठीक करने में, ठीक है जनाब। लेकिन इसके रिजल्ट को फास्ट करने के लिए और इसके रिजल्ट को बेहतर बनाने के लिए हमने बहुत ही अमेजिंग किस्म की तीन ताकतवर जड़ी बूटियां हैं जिनको हमने इसके अंदर ब्लेंड किया हुआ है, जो क्या काम करती हैं, जो बहुत ज्यादा असर वाली चीजें हैं, लेकिन उस असर को आपकी स्किन के अंदर मुंतकिल शुतुरमुर्ग का तेल करता है, ठीक है जनाब। अब वो जड़ी बूटियां दूसरे आयलों के अंदर भी मौजूद होती हैं, आप बाजार से जब लेते हैं जिनके अंदर शुतुरमुर्ग का तेल नहीं होता, ठीक है जनाब। लेकिन ये जो कॉम्बिनेशन हमने रखा हुआ है शुतुरमुर्ग का तेल प्लस उसके साथ तीन जड़ी बूटियां, यानी कि जो शुतुरमुर्ग का तेल है उसके अंदर जो एक खसूसियत है ये है कि उसके अंदर ओमेगा 3, 6 और 9 पाए जाते हैं, यानी कि वो कुदरती तौर पर आपके सूजन को खत्म करता है। उसका सबसे बड़ा रोल जो है क्या होता है, पट्ठों को मजबूत करना और सूजन को कम करना और डीपली यानी कि स्किन के अंदर चला जाना। अब जो शुतुरमुर्ग का काम है ना, मैं आपको बताऊं, बेसिकली शुतुरमुर्ग का जो तेल होता है वो कहीं ना कहीं दर्द का काम भी करता है, मेनली उसका काम होता है सूजन को कम करना, लेकिन इसका एक और काम जो है वो ये है कि स्किन के अंदर जज्ब हो जाना। अब हमारे माहिरीन ने इस ऑयल को जड़ी बूटियों के साथ क्यों ऐड किया है कि ये अपने साथ उन्हीं जड़ी बूटियों को भी आपकी स्किन के अंदर पहुंचा दे, समझ आ रही है? जो इसका काम है शुतुरमुर्ग के तेल का वो बेसिकली आपके जिस्म के अंदर जज्ब होना, ये इस तेल की अफादियत है। यही है कि जनाब ये आपकी स्किन के अंदर जज्ब हो जाता है। अब हमने ये जो ताकतवर तीन जड़ी बूटियां हैं वो कौन कौन सी हैं जिनको हमने इसके अंदर ऐड किया है एक खास तनासब के साथ, तो जनाब ये आम तेल बिल्कुल भी नहीं है, ये एक बेहतरीन डिलीवरी सिस्टम का काम करता है। जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना कि इसका मेन काम क्या है, ये बहुत अच्छे तरीके से उन जड़ी बूटियों को असर को आपके जिस्म के अंदर पहुंचाता है, ठीक है जनाब। जो शुतुरमुर्ग का तेल है ये बेहतरीन डिलीवरी सिस्टम है इसका, शुतुरमुर्ग के ऑस्ट्रिच ऑयल का, और ये बेसिकली उन्हीं तीन जड़ी बूटियों को जो के जिनके नाम विंटर ग्रीन, ठीक है जनाब,

पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दरमियानचा अवलीने वनडे मैच रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लुबेगी। द पाकिस्तान क्रिकेट टीम कप्तान शाहीन शाह आफरीदी द टॉस पर मुकाबले ओवल चिन्नन वरजबा यदगार जुड़ो मुंग बदा कोशिश भी चे ऑस्ट्रेलिया टीम पर कम न कम स्कोर बांधे आउट को वजह दी च पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दरमियानचा तरवोसा योसल यूलस मिचुना लुबेदली पदे के ऑस्ट्रेलिया ता यो अविया मिचुना गटलोसरा वजह बरतरी असिलदा। पाकिस्तान सिर्फ शपक देश मिचुना गटली और द्रे मिचुना द बगैर नतीजे खत्म शवे दी। याद दीवी ची पाकिस्तान टॉस गटलो नपस द फील्डिंग फैसला करे दे वक्त पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया दरमियानजा रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के दावलीने वनडे में जरी दे। अवो शरीकों द मौसम हाल मौसमियातो मुहकमे तरमख तेरो सलीरेश घंटों के करक बनू लकीमरवत और टांग ख्वाब शासिमो के पासमान वरेजे औजने इलाकों के बरान शवे दे। मौसमियातो मुहकमे तरमख तेरो सलीरेश घंटों के करक बनू लकीमरवत और टांग ख्वाब शासिमो के ज्यात न ज्यात दर्जे हरारत शपक दिर्श और कम न कम दरिश दर्जे सेंटीग्रेड रिकॉर्ड करे शवे। पहावा के दनमय तनसुब द्वादिश फीसद और आवार अवतार लस किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड करे शवे दे। बल अड़खता सबाबन मर सबा सहर अतमी नट दपासा पिंज बजे सेरवही औ माखाम अतलस मिनट दपासा ओव बजे बा डूबेगी। दाऊद रेडियो अमन न्यूज नेटवर्क मुहिम खबरुना नोरा मुहिमो खबरुन और दलो दपारा रेडियो अमन 88.4 करक टांग और बटाग्राम फेसबुक पेज लाइक के उस माता द न्यूज टीम सरा राका इजाजत दलो अल्लाह पामान पा।

मैं हूँ असमा नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमक

0: الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. أو سيرسي
1: نبي سردار زمان. मैं हूँ आसमान नूर वजीर फ्रॉम मंगल मेला। मैंने अपने बालों के लिए कई शैम्पू आजमाए लेकिन कोई रिजल्ट नहीं मिला। फिर मैंने अमन रेडियो करक पर इकराम मामू का प्रोग्राम सुना। उन्होंने एश्मा आनियन शैम्पू के बारे में बात की। जब मैंने मंगवाया और इस्तेमाल किया, माशाल्लाह उसने मुझे कमाल का रिजल्ट दिया। मैं सब बहन भाइयों को ये मशवरा देती हूँ कि अगर आप लोग अपने बाल मजबूत और सेहतमंद बनाना चाहते हो तो आज ही अपने करीबी दुकानदार से एश्मा आनियन शैम्पू मंगवाए। एश्मा आनियन शैम्पू सेहतमंद और चमकदार बालों का राज।
2: गुलोनी हो रिस ता पुंदे हो माह के डेरी ज्याते हरा बेवे नु दुम रजर सिंगर टिक्षुले। यह हो रेन हो रे माह हो माह के दा डेरो कपनोई क्रिक्री में सेमाल करल हो माह ता ही सो रिजल्ट ओ फाइदा न कड़ारा। अव चिकला माह उरूसा शापिंग सेंटर ना जान दा पारा इश्म क्रिक्री मरावडल नु माह ता ये डेर जबरदस्त रिजल्ट राको। रजा गुलोनी हो रे जे जे हम जान दा पारा इश्म कतासो हम वाड़ो चिमुंग पुंदे सफा सुथरा और हिस्सा शी नयो जल जरूर।

मेरी कला करो। मेरे चेहरे पर पहले दाने और दाग धब्बे थे। मैंने अपने चेहरे के लिए मुख्तलिफ किस्म की क्रीमें, एक्ने ट्यूब्स और मुख्तलिफ फार्मूले आजमाए, लेकिन कोई खास फायदा नहीं हुआ। फिर मैंने अरूसा शॉपिंग सेंटर से

अच्छा जी बिल्कुल, ये मैसेज हर वाला ही, अब यही कहना चाहिए तारिक भाई। अच्छा जी सही। सलाम तारिक भाई, आज आपने बहुत प्रोग्राम किए हैं, आपका गला खराब हो जाएगा। तारिक भाई मैं सब प्रोग्राम सुनती हूँ लेकिन कॉल और मैसेज का मौका नहीं होती। हलीमा फातिमा वजीरस्तानी को स्पेशल सलाम, बाकी सब लेसर को सलाम, मैं फातिमा रदान शिमाली वजीरस्तान से। बिल्कुल ठीक, तो

0: अच्छा जी, कॉल तरह तरह प्रोग्राम से कॉल से मिले भी 409-271-2921-2921। लेट्स सी फर्स्ट कॉलर ऑफ द शो। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, सुख खबर क्यों देखिए मुझे ना अनुष अरमानी डुमेल ना जी। अनुष अरमानी बखेर रोल डुमेल ना, फर्स्ट टाइम कॉल देवो को सही, फर्स्ट टाइम कॉल देवो को प्रोग्राम की दरता हर कले भी यही आओ रेडियो ओमन फैमिली के हां दरता हर कले भी जी। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फल बांधे सही वेले वेले ला दी खैर वो की जी बिल्कुल ला सही दे बिल्कुल दा खबर ठीक ते फर्स्ट टाइम कॉल हो की ना सडाई नो बस बिया खामा खा गा दे रेडियो लग शान दे प्रेशर भी करा छे सडाई खबर ने शी के वाले खबर हो ना बियर शी धेरा मनना लोया खदा शी बिल्कुल अरमान दे पूरा शो मासरा दे बिल्कुल दा दे प्रोग्राम की खबर हो शवे जी बिल्कुल सही बस दा होचा तो पता ना ओ सो पता लगी दली तो कहना अच्छा जी तो जो पेशावरा दे अच्छा जी सही सही बस उस बिल्कुल पता चलता लगे दिल्ली तो कहना डेरा मनाना चे प्रोग्राम से तो कॉल को लो या खजर चा तो सलाम दुआ लजल घोड़े जी फरमाइश खजी बिल्कुल सुंदर अर्थ वो शया जो मोत मिला उसी जो बिल्कुल अपने क्यों होता था ठीक शो जी जी कवा सुंदर तो अच्छा जी बिल्कुल शाह सही था डेरा मनना बस कसे मत मिलाऊ शी के बेवे दर्द प्लेगा का मिलाऊ ना शो बेवे खबर के जी ना बेवे खेर दे बोला दर्द प्लेगा सही था ठीक शो ढेर मनना कॉल के बोले यो जहान मनना ओके ला फिर ढेर मनना तो मैं नहीं कॉल खड़ा हूँ ढेर मनना वैसे मौत संदरा प्ले का खजीज कसर जब मौत संदरा मिला उसी बेवे दर्द प्ले का ठीक शो कैसे जब काल बने बल्सो को देखिए मुझे नर्द्रीमी अस्सलाम वालेकुम डेरा मनना दसो खबरी के भी दिखिम से ना लकी ना रिजवान रिजवान तो हर के ले गई प्रोग्राम के डेरा मनना यो जहान मनना प्रोग्राम और वे
1: ओले नानो दाम खुला दे दे मा कर गिट करे ये जा दे अगर पर लार से कन ये पलग खुआई तलार जो टाइम बस दगला सुपोरे डेरा
0: सही सही शाह मतलब ये 12 बजे पर वोरो प्रोग्राम ही ना
1: प्रोग्राम नो खले माशाल्लाह रुदाई दुआ में वाले दे मस्जिदार माश पीर मौका या ये
0: सही डेरा मनना छे प्रोग्राम ही ना शौक बांधे वोरवे रिजवान दार तो छे सबर असर शरीक वे नन खुदा से लश्की गम जान सा दे प्रोग्राम दे
1: आई बस मो वेले छ जीन न मात पता हो सके दे लश गम जान गम दे
0: जी जी बिल्कुल लासे दासे खुशा गोंद खबर अर्थ होगा प्रोग्राम की मतलब वो ची दासे तो से बने तेरे शिवी या मतलब जिंदगी की दासे खुशहाली खबर अदर बंद रह गली भी या दिन अलवा दासे तकलीफ खबर अल्लाह दे हर सड़े तकलीफ ना हो सती हो बिया हम मतलब दासे इधर बने तेरे शिवी खबर मतलब नवागर असर शरीक वाले शे
1: और
0: اچھا جی صحیح ده ډیر مننه رضوان چې لکی مروت نه دکالو کو صحیح ده
1: خوشاله
0: ډیر مننه، ثانک یو کال کولی یو جهان مننه.

हाँ जी बिल्कुल मुक्त मैसेज करे दे रोशिहान, मैसेज करे दे तारिक भाई, वेलकम टांग के सब सिस्टर को गुजर ईद मुबारक हो, एंड जोया महसूद को स्पेशल सलाम, एंड गुजरे हुए ईद की मुबारकबाद, एंड माई ऑल करेक्ट करेक्ट फुल लिसनर ता वेलकम। अच्छा जी डेरो वंदना थैंक यू डेरो मनना रोशिहान मैसेज को बोले।

हाँ जी बिल्कुल, ये सुंदर है तेरा तदरीब और गामशी बहुत सुंदर है बिले भी और बिल्कुल छापा वास की दे नो बिल्कुल वोर भी दावा सुंदर और दे सुंदर है नबाद भी आज़र सी।

0: हाँ जी सही बिल्कुल शमीर प्रोग्राम की नो बिल्कुल ये सॉन्ग बिल्कुल शामिल है प्रोग्राम पाहिर के बिल्कुल ये सॉन्ग शामिल है ठीक शो अच्छा जी आयशा इन ज़ारा अफगान शो बहुत अच्छा था मैसेज में ऑलरेडी शामिल कर दे सही देर मरा ना थैंक यू मैसेज देवो को लकी मरवत ना जरलाल भी मैसेज कर दे विच वो खबर देखे जी वेलकम एंड सलाम सही देर मरा ना थैंक यू मैसेज के वाले तारिक भाई शी इज वेरी नाइस ईद मुबारक सलाम दासे बगोर क्लियर मैसेज ने दे गले हो दास अल्फाज बने पोई जो बिया हम डेरा मनन छ जा हम मैसेज करे दे यो जहान मरे ना देन रो बवे छ मैं क्यू छ जहान तारिक भाई वेलकम वेलकम मनत छ के फातिमा नदान आयशा एंड ज़ारा अफगान देन लवा सहर खान और मिस रोशनी सही ना डेरा मनना थैंक यू सो मच मैसेज को वाले यो जहान मनना रोशी खान तव्याया दिलबा व्याई जबात तारिक भाई ता व्याया बल्क वाया भाई मोथा ई डी रोख बिया वे हेर बो व्याई चे हेर बोशी ओके दिलबा मैसेज कर दे अच्छा सही ना ठीक शो डेरा मनना थैंक यू मैसेज को वाले यो जहान मनना विच आई एम सहर खान भाई राज भाई वो दे दरसरार वस्ता लाए बस दा खबर हो दी ठीक तो हो इंशाल्लाह चर तक भी कंबाइन शुरू चुकम दे जो राज भाई बिल्कुल के भी ठीक शा नो दासे पे चर तक इंशाल्लाह शो के जरूर रजी सही ना डेर मना ना बिल्कुल काल चुकम दे शामिल जी प्रोग्राम की पोल 0927 291 292 यानी पर 0927 291 292 अच्छा जी चा मैसेज करे दे जे द म्यूजिक को मोता खूब रवासा अल्लाह खबर हो दे सही अच्छा जी टाइम हम बिल्कुल कम दें सिर्फ 100 मिनट बोती थी इजाजत तो बिल्कुल देना खोले भी इंशाल्लाह सबो था मॉर्निंग के तो सर मुलाकात की जी सबो था मॉर्निंग के 8:30 to 9:30 पर ठीक है उर्दू के जो प्रोग्राम दे भाई इंशाल्लाह इजाजत सर मुलाकात की जी प्रोग्राम के लास्ट और लकी कॉलर से मिले भी बेबा मजीद कॉल नशे मिले भी जिसके टाइम दे खत्म शुभ अस्सलाम वालेकुम जी बिल्कुल तो से कॉल जो कम दे हाँ ड्रॉप शो किसी जी बकाल बाने लास्ट कॉलर शो को देख कम देने दे अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी सो खबर है क्यों क्यों देना रोशी खान खबर है क्यों अगर रोशी खान खबर है क्यों जब प्रोग्राम के मैसेज कभी अच्छा जी प्रोग्राम की दरता हर कले भी आई दाहो दिन प्रोग्राम की कॉल को तो से मैसेजेस को वही नन निकालो को प्रोग्राम की प्रोग्राम कौन वो को हाँ जी बस ठीक था बता से कल करे भाई इंशाल्लाह दासी प्रोग्राम की हर दरीमी सही था
1: बस देर हान भी होता
0: हाँ जी देर बने ना लोया खासा जी जी प्रोग्राम हम तो से तन खान देर को दिन लवक काल दे हम प्रोग्राम की नन वो को जी सब अवेल वाड़े तो से लकी कॉलर ये मजीद कॉल से मिला वाले हना शेमा जके टाइम दे खत्म शोए बस समय आया
1: हाली मोबाइल के वाह एनर्जी
0: वाले तकाल करा एनर्जी वाले तकाल करा बहुत मना हो हाँ जी डेर मनना थैंक यू कॉल के वाले यो जहान मनना ठीक था
1: बस सही दो वाला
0: ओके लाफिज लो ये खजा शी डेर मनना कॉल के वाले कॉल रजी हो मजीद कॉल दोबारा सॉरी फॉर दैट अच्छा रोशी खान मैसेज करे दे काली हाउस कड़े विषय तारिक भाई अल्लाह आपको खुश रखिए आबाद रखिए हमारी दुआएं आपके साथ हैं बस दिल रुबाह को ईदी दे तो आज की शो की बात ही कुछ और है मुझे तो बहुत अच्छा लगा आज का शो ओके गुड नाइट डेरा मनना थैंक यू सो मच मैसेज के वाले रोशिहान डेरा मनना वीआई करना चे टांग वालों था ददा जालाई विदा सॉन्ग प्ले का चे अच्छा जी सॉन्ग फरमाइश दिखड़े दे दा सॉन्ग हो माँ बखियल माँ ऑलरेडी परन हम प्ले करे वो खैर सही द ब्याबे हम प्ले के बिल्कुल खुले सॉन्ग दे बिल्कुल दा सॉन्ग बच्चों को दे प्ले शी सही